बता दूं कहाँ नॉलेज से कुछ जाजो नेपाल ऐसा नेपाल ऐ जाजो अच्छी नियना चुना दिला जी रश्मिला ले प्रविधि दी रविंद्र जाजो सा आ विविध बुखार पाके होने तकले ना पांगो बुखार वंगो आयत बार भिंगा स्वी निकोगो अने आदिवासी दी जुलंग ला अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस लोके लस्ते आदिवासी जनजाति महासंघ तक से आदिवासी तेगु थोड़ा छाता संगठन दो पाके आवाज़ है ना ये तो स्कॉन है तो जिको आदिवासी दिवस है ना अरे तुक्सी दखले ना पां खुला मन से यागु खाला रैली से तो स्कॉन है तो जिको जुलो करीब करीब एक घंटा सी भी अपो है दो रैली वही जो भी तो खुला मन से तुक्सी जाए तो इसको है ताजी का तो आदिवासी दिवस होने को जाजलो अभी से सेना गुली ना आदिवासी जनजाति ना पा अब तो आदिवासी जाति तो तो दो वे को अभी सासे पहाड़ पको अप्पो अन्ना यंके को था था को जाति पे यंके को कुता जुला निवाते को ना तुक्सी आत्तक को ही गुली ना आदिवासी दिवस से दक्कले अप्पो सावागिता तुक्सी जोगो तो ओके लगी दक्को निवात सकल सित यो कोई को सवाई यो कोई है वो को खंडा था तुक्सी जाए ना बस वो सीमित निवात विशेष ना दे तो वो ना पस्वापी निवात उसको थिनी उखास तुक्सी जापु समाज मतलब जापु महागुथी निशे कया अनो साक्य बजराचारे समाज माली समाज नापित समाज अन्य कोई कोई खंडा तो सो रियली वो अच्छी जाए ना बैनर जाए अन्य बलम भूमि सापुजा अजी दक्षिणा ना थोड़ा ध्याफे मगजे मतलब दे तो भूमि सा दबुला दे तो वो बाइक ना मेगु थी थी था था गु त्वायुप ती बैनर जो ना वो पीजा यो को है निवात से खंडा तो वो से तो उसको है बाला गु खाच हरा सची निवात हक अधिकारी खेले न्याप्ले लिए ला खाला रैली वो निदयो हक अधिकार गेना जुला लगाना सिख पिसा निसा ना ते फुतरा रैली दही जाए शक्ति प्रदर्शन खाच ही जाए सोचे थी जी गु तो हक अधिकार प्रति सोचे थी माली वले जाए हक अधिकारी बारे नोवाई जी सा लगा जाए वो छगु जाए बिंबात्मक धैनी वो जाए उपस्थिति खांग ले जाए तो उसको है बाला को उपस्थिति जुला अल्तुसी आदिवासी जनजाति दिवस या नारा ना तो जाए आदिवासी जनजाति प्रस्तुति कर्मी तेगु सम्मान जीवन वस्तु स्वास्थ्य या संरचन लगा जाए विशेष ना परंपरागत रूपा प्रस्तुति कर्मी जिया जैन चौंपी ने गु सम्मान है जाए तो आगु जुला तो जाए अंतर्राष्ट्रीय नारा है जुला खला नेपाल है ना मेगु नारा तो प्राप्त अधिकार रक्षा थो आवश्यकता पहचान सहित या समावेशी व न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण ने छिगु साझा प्रतिबद्धता तक आज थो आदिवासी जनजाति महासंघ बिगु नारा जुला तर अंतर्राष्ट्रीय नारा चाहिँ मेगु जुला यहाँ सा थुक्सी आदिवासी दिवस तस्को हे तजिक सम्पन्न जुला अले अन चाहिँ ठ्याक्कै संख्या गुली दुर्गा मस्यु तर 35,000 मुङ्केगु टका चाहिँ अन सुरी जुन ज्याखन जुल आदिवासी जनजाति महासंघ पाखे ओस्पे अपोहे आदिवासी त रैली दुथ्यागु रखा चाहिँ दोषी अनुमानियागु दु अहिले आदिवासी हक अधिकार बारे यो को यो अन्तर्क्रिया जुल मगर ते राई ते गुरुङ ते थथगु अन थासे चाहिँ विभिन्न विषयले अन अन्तर्क्रिया जुल नेवाते सन छौ अन्तर्क्रिया ज्याझो या त नेवादे दु सुनिग प्रदेश या गोसाले आदिवासी जनजाति या हक अधिकार या विशेष छौ अन्तर्क्रिया तो चाहे कोपुन्दे चुंगो प्रतिभा समाज या सातवा की स्मृति सभा कक्षे जोगो जुला अले थो अंतरक्रिया चाहे निवान झलुवा डॉक्टर पुष्पराज खनिकार चाहे मूल वक्ता कथा थ्योंगो जुला अले वे कल चाहे विशेष ना तो आदिवासी तेगो तो विश्व चाहे आदिवासी ते ऊपर या गो अत्याचार अले उपनिवेश व साम्राज्य बाधा या ना चाहे थी थी जाति जनजाति या कला संस्कृति मसिकाली सिंह भाषा या तो नंगा छुगु क्रम जारी जुआ छों बले संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत थी थी संघ संस्था व निकाय आदिवासी जनजाति अधिकार संरक्षण या मागु ढगा चाहे तो निकोगु विश्व युद्ध लिपा बल्ल आदिवासी हक अधिकार सुनिश्चित याना अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस होने को चलन हग ख चाहे बेकलों तैयार दी गुजरा ले जल जमीन जंगल या नापांगो अधिकार स्थानीय रिथानी आदिवासी जनजाति या तो दही दही को खाया था आईलो 169 पाखे स्वीकार या दुंगा आत्मनिर्णय सहित या आदिवासी हक अधिकार चूड़ा को खान बेकलों आना खाना दिला अले नापा आदिवासी तेगु चाहे अधिकार या दस्तावेज कथन कैगु या यूएन ड्रिप तकाना तैगु या नजीस ओके यो खानी से कया इफ पी किया गु अजागु तो कौन खान ता अनुभव तैयार दी बोल खाला उबले थो चाहे दिए दबुया थो संगठना मत
संरचनाका संस्था सञ्चालन प्रशिक्षण ढकान जोगोजुल व प्रशिक्षण चाहिँ दिए दुबे नाय रश्मिला प्रजापति यागोजुल अलि थो बुख चाहिँ थनजी सोइसना nepalbhashatimes.com ए nepalbhashatimes.com खला थो बुख ठिकै तरिका त इदल आबेकल मखला सुना नवा गुली तेउर का तेगु अधिकार चाहिँ वेक अपिङ जुल तर फोटो यु केसे चाहिँ थो तस कहे मजुल वेकल अपिस चाहिँ गेन दिलास अन कार्यक्रममे सायद वेक अपिङ मथेन वेक अपिङ मथे साथ अभी मेरे पिसा शेयर या को फोटो साथ तो आज युखा तर वे का पिसा साय था ना एआई जेनरेट या ना से फोटो ते तला अले अन्न मिले ना मजो आदिवासी हक आक अधिकार संबंधी अंतर्क्रिया कार्यक्रम दगा थाय चाहिँ वेक अपिस नेवास सांस्कृतिक केन्द्र काठमाडौँ नगा चाहिँ दैदिल छ थो चाहिँ मजा मिले मजुल थोकले एआईयु प्रयोगलाई यो कोही जे सङ्गोदो दक्षा एआईयु प्रयोग न थोदो फोटो पिकाको यान चोबोदो तर फोटोलाई एक्चुअल टेमाला निसा साथो एक्चुअल जुको कार्यक्रम ख यदि सिक्पिस अन्यना छुना दिया सा नेपाल भाषा टाइम्स या पि सुना चाहिँ थो फोटो जेनेरेट यान दिल वेक अपिन त फोटो बरु कार्यक्रम जी साथी थोकले सामाजिक सञ्जालले दक्षा फोटो तै अन छु फोटो कया त साजु मखला छपा फोटो निपा फोटो ज्वाइन ते जुन तर थिएन एआई जेनेरेटेड फोटो त चाहिँ एकदमै चित्त बुझे मजुल थोक चाहिँ छिक्पिनको ध्यान गर्छन् यहाँ चुना तका तासे ज्याजोसा आज मेरो विश्वास त्यहाँ